प्रभु जन को जन नानक मेल लय गल लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देवो हा दान हर प्राण जीवाया हम हो लाले गोले गुर सिखा के जिन्ना आन दिन हर प्रभु पुरख ते आया मेरे मन तन बिरहों गुरमुख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई मोको करहु उपदेश हर मिलै मलाया राउ जा हर प्रभ भावे ता गुरमुख मिलै जिन बचन गुरु सतगुर मन पाया वडभागी गुर के सिख प्यारी हर निरबाणी निर्वाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग न पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभतारी हर आपे गुरमुख मिलै मिलाया जन नानक बोले गुण बाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुर पुरख जिन सतगुर जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावै मन तन शीतल सब हरिया हुआ वडभागी हर नाम त्यावै भाई रे मोह कौ कोई मीठ लगावै

हर प्रभु की हर कथा सुनावै रहाउ। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामै हर स्यों चित लावै। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोलै सो मुख अमृत पावै। निर्मल नाम जित मैल ना लागै, गुरमत नाम जपै लिव लावै। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से भागहीन मूए मर जावै। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहु हर त्यावै। तू दाता जी सब तेरी, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावै। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गूजरी महला चौथा कर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सब ना कौशन बंद कर हर दिए। हमरा जोर सब रहो मेरे वीर, हर का तान मान सब हर कै वस है शरीर राव। भक्त जना को शरदा हर आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर श्या बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारै काम हम हर लाई, महसो हम करह जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाई। गूजरी महला पंजवां चौपदी कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंतो पाए, ता कारिज का गय कर तरया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूखे काष्ट हरया राव, जनन पिता लोक सुत बनता। कोय न किसकी धरया, सिर सिर रजक संवाही ठाकुर। काहे मन पौ करया, उडे उड़िया वैसे कुसा। तिस बाछे बजरे शरया, उन कवन खलावै कवन जगावै। मन मह सिमरन करया, सब निदान दस आष्ट सदान। ठाकुर करतल धरया, जन नानक बल बल।

अब अंति अवसर आई बनयो है, उन पेखत ही काल दृष्टया कर कर अनर्थ विहाजी संपै, सोयना रूपा दामा पहाड़ी कहो पहाड़ा मिलया, होर सगल भयो दे बिराना हैवर गैवर।

सुख राजा नाम कुटम सहाई नाम संपत गुर नानक कौ दी यो मर न आवै जाई गुजरी महला पंजवां ते पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ज्ञानं गहनाशकायिङ्गता हर की प्रेम हर की अगम अगाध कथा सुनिय अवर अवर बिद बुझिय बकना कथन रहता राव आपे भगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभु पूर रहो है पेख्यो जतर कथा सुगुजरी महला पंजवां मता मसूरत अवरशन सयान पौ जान कौ कछु न आयो जय जय अवसर आय बने हुए तहाँ तहाँ हर त्यायो प्रभु को भगत वशल बिरदायो करै प्रतपाल बार की न्याई जन कौ लाड लड़ायो राउ जप तप संजम करम धर्म हारु कीर्तन जन गायो शरण भरियो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो गुजरी महला पंजवां दिन रातियां राधो प्यारे निमखना की जय ढीला संत सेवा हार भाव नीलाई है त्याग मान हा ठीला मोहन प्राण मान जंगीला बास रही उही रह कै संगई पीख मोहियो मन लीला रहाऊ जस सिमरत मन हो चनंदा उतरे मन हो जंगीला बिन मिलवे की महिमा वर्ण न सकू नानक परे परी लाल गुजरी महला पंजवां मोन जोगी सस रग ते कहावत सब कीने बस अपन ही तीन भवन तीन देव अर कोट ते तीसा तिन की हैरत कछ न रही बलवंत ब्याप रही सब मही अबर ना जानस दुखो मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपटाही गौ नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गई गुजरी महला पंजवां दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ धी राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उरे बाल गोपाल रहाउ मैल वार नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकारु कहो नानक तिस गुर बलिहारी जैन सबका किया उधार गुजरी महला पंजवां मात पिता सुत बंद बंद सुत मात पिता भाई सुत बंद पौ तिनका बल है थूरा अनक रंग माया के पेखे किस साथ न चल पूरा।

जास मरातू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सलाही रहाऊ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही को प्रभयाही नानक टेक भई करते की होर आस बिडाणी लाही नानक टेक भई करते की होर आस बिडाणी लाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोदार रागासा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदार तेरा कहा सो करके हा जत बै सर्व संभाले।

राग गूजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सत पुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाउ। हर जन केवड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदार प्यास। हर हर नाम मिलै त्रपता सहै, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस

जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवय उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंतो पाए ताका रिजक आग कर तरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया।

अनक करहें हर पूजा जी, तप तप हैं जप हैं बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरुष ब्रह्म करता जी, तुद जीवड़ वरना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई, तुद आपे पाव सोई वरत जी, तू आपे करहें सोई, तुद आपे श्रेष्ठ सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जन होई, आस्था महला चौथा, तू करता सजार मैडा साई।

पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोष सब तुम काव आप हाथ दै मोहि बचाव।

ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो

तुमरा लखा न जाए पसारा किहि बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत पुज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हवा बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो दोष जिते उठ बतोत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज दब शरणी परे तिनके दोष्ट दुगत भय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रक्षा होई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हरिहो ताके ताप तनक मोह हरिहो रिद सिद कर मोह सब होई दुष्ट शाह स्व सक न कोई एक

सवैया पाए गहे जब ते तुमरी तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ। सरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तो बखाने ओ। दोहरा

कर दे रहे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दिया ए बड़िया, कह नानक सुनो संतो, सब धरो प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच सब सब तिद कर सभा गए। वाजे पंच सब तिद कर सभा गए, कर सभा गए शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ, चित कर अनहद वाजी। आनंद

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंच तिसको होय उधारो यह वास्तव तजी न जाई नेत नेत रख उर थारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारू।

पौड़ी। सोहर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है, तिस रूप नरेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है, जिस

करो बेनती सुनो मेरे मीता संत कहण की वेला पीहा खाट चलो हरला आगे बसन सुहेला

अंतरजामी पुरख बजाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोका कर संतन की तू। अंतरयामी।

0: मन का फूल सब कुछ
1: बिस्तरिया,
0: मन का फूल सब कुछ बिस्तरिया,
1: चढ़ी लत्ती दी रही ना सार, मेहर करी मेहरा दे असाइया, मैं पापी तू बचन हार, मैं

परम सत्कारयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में संगत रूप में जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा जी समा मिले आप जैसिया रब स्वरूप संतान के दर्शन की राह करते हुए आप जी कुछ समय के गुरमत के विचारों की सांझ करिए। आप जी के सन्मुख सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के महान जीवन इतिहास के कुछ पन्ने कुछ कहर आप जी साझे करने का यत्न करिए। इस तो पहला कि अपने विचारों अगाह तोरा आप संगत फतेह अर्ज करके आप जी को कुछ कहने की आग्ञा मंगता हाँ। सारी संगत फतेह प्रवान के कुछ कहने की आग्ञा बख्शिश करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में आप सारे बैठ के अज गुरदेव पातशाह के दर्शन की दार करते हैं। अपनी आत्मक तृप्ति के तौर पर महाराज जी गुरबाणी के कीर्तन सरवण कर रहे थे। मैं खुश हो रहा कि बच्चे छोटे छोटे मैं अपने हिरदे में एक गल आखदा हाँ कि जे कोई मैनू यह सवाल करे कि तुहानू कनेडा में सब तो सोहनी चीज कहड़ी लगी तो मेरा जवाब यह होएगा कि इतने जो मैं छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने सिर पर पटके सजाए ने रुमाल बधे ने दस्तारा सजाइया ने उन्होंने छोटे छोटे बच्चों तो नौजवान बच्चों जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों वाल आता वेखदा हाँ तो मेरे लिए सब तो खुशी के पल वो होंगे ने सब तो खुशी का सबब वो बच्चे ने। मैं तो पहले बच्चे कीर्तन कर रहे सन इन्ना वधिया कीर्तन कर रहे सन क्योंकि बच्चे के मन में पवित्रता होंगी। जो जो बंदा बड़ा होंदा जांदा इहदे विच कई बार होर तरह के ख्याल आ जाते बच्चे के मन की पवित्रता से उसका बाणी नाल जुड़ जाना यह गुरु की रहमत की बहुत वड्डी निशानी है। गुरु ने बख्शिश करके तुहाडे नगर उत्ते अते तुहाडे परिवारां उत्ते महाराज ने बख्शिश की है जिन्हां दे बच्चे इस सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों इस तरीके जुड़े ने। महाराज कृपा करे ये बच्चे इसे तरीके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों जुड़े रहन गुरबाणी के शब्द विचों आनंद मानन अते उस सच नूं पछाण के अपना जीवन जीउण दी एक जात सिख लैन यह मेरी कामना है दुआ है। धन्नवाद करदा हाँ मान परिवार सरदार राम रणजीत सिंह जी मान जिन्होंने अज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में आके शुकराना धन्नवाद किया है तो अज के लंगर की सेवा दी है। मैं परिवार का अपने वालों धन्यवाद करता हाँ जिन्हें से सतगुरु महाराज ने बख्शिश कर दी क्योंकि सतगुरु का धन्यवाद वो करता है जिहड़ा वधिया इंसान है जिहड़ा वधिया सिख है। तुसी किसे ते एहसान करो जे तुसी उहदा धन्यवाद तुसी किसे ते एहसान करो जे वह एहसान किए जाने वाला तुहाडा धन्यवाद नहीं करता तुसी मन में सोचते हो कैसा बंदा है इहदा एडा वड्डा काम किया तो इन्हें एक बार थैंक यू भी नहीं आख्या। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो दातां देंदे ने तो साडा इंसानियत के तौर पर फर्ज हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का धन्यवाद करना। सतगुरु अब सब दाता तेरिया बख्शिश कीतिया हुई सतगुरु महाराज मान परिवार को चढ़ती कला बख्शिश करे जिस भावना करके उन्होंने सेवा करवाई है सतगुरु वह भावना पूरी करे महाराज परिवार को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की बख्शिश करे। ये अरदास करता होया मैं टॉक भी आप जी की सेवा अरदास दाई शुरू कर लगा। अरदास की है सतगुरु महाराज के चरणों में की अरदास महाराज किवें प्रवान करदे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का समा है। पिछले हफ्ते आप गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत के पन्ने पढ़ते पढ़ते इतने पहुंच गए कि गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत बाद सतगुरु महाराज ने सिखा के नाहुकमनामे जारी किए कि अज तो बाद जो भी सिख साडे दरबार में आए कोई चंगा घोड़ा लैके आए कोई चंगा हथियार लैके आए। सतगुरु महाराज के सिखा ने गुरदेव के हुक्म मन के महाराज के दरबार में चंगे घोड़े चंगे शस्त्र लियाने शुरू कर दिए। महाराज ने अपने दीवान नंद चंद इशारा करके एक नगारा अपने दरबार में मढ़ा के मंगाया जिसका नाम रखा गया रणजीत नगारा। आपको याद होगा कि सतगुरां के दरबार में एक प्रसादी हाथी भी है। यह प्रसादी हाथी कौन लैके आया यह नाम प्रसादी हाथी क्यों है इतिहास के बड़े रौचक पक्ष ने पर वह गल्लां कहण दा मेरे को हुण वक्त नहीं क्योंकि घड़ी दे सुनिया बहुत तेजी ना जाती। नेड़े दी रियासत है कहलूर और आ राजा है भीम चंद। वह भीम चंद कह लगा आ नेड़े नगारा खड़कण की आवाज आ रही है मेरे को सूहिया रिपोर्टा पहुंचे ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सिख माला वाले हाथों में तेगा पकड़ते हैं इस तो पहला कि बगावत बन के मेरे राज में मैं खो लैन आओ रल के चलीए तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को आनंदपुर साहब की धरती तो उजाड़ दी। उन्हें सारे अहलकारा ने रीहां में हां मिला दी लेकिन वह धर्मी वजीर है जोड़ा वह ना है देवी चंद। उन्हें आखा राजा भीम चंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच है तो सच कदे हराया नहीं जा सकता औरत को जित सकती होंगी है तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना लड़के जित नहीं सकता उस गुरु के तेरे जिम्मे बड़े आसान बस इस गल राजा भीम चंद बर्दाश्त न कर सकया। उन्हें आखा नौकर है मेरा वजीर है मेरा लेकिन सिफतां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी कर दे ये गल मैनू प्रवान नहीं। उन्हें उस समय सदे ने अपने सिपाही कहने लगा मेरे इस वजीर फड़ो ये हाथों हथकड़ियां लाओ तो पैरों पाओ बेड़िया लै जाओ जंगल में
ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੇਣੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੇਣੇ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਿਆ, ਨੇਤਰ ਜੋੜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਕਰ।

0: तू सर्व शक्तिमान जाने जान समरथ करे भगता तेरा किदे के सिर उत्ते हाथ
1: जदों करे अरजोई तेरा दासरा करे अरजोई तेरा दासरा तू फेर ना लगावे देरिया तू फेर ना लगावे देरिया
0: इको तकिया दा तार तेरा आसरा मैं होर सबे ढाइया तेरिया मैं होर सबे ढाइया।

0: तीज मेरी माने यार जोई को तेरा ही सहारा हो रे आसरा ना कोई
1: करे जोदड़ी पमती तेरा दासरा जोदड़ी पमती तेरा दासरा तू थम जुलमी हनेरिया तू थम जुलमी हनेरिया
0: इको तकिया दा तार तेरा आसरा मैं होर सबे दाइया तेरिया मैं होर सबे दाइया तेरिया मैं होर सबे दाइया तेरिया
2: देवी चंद वजीर ने नेत्र जोड़ के मन जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में अरदास की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में अरदास ते सतगुरु महाराज के चरणों में अरदास प्रवान हो गई क्योंकि गुरु है जेड़ा वो जानी जाना है अंतर जामी या कट कट के अंतर की जान। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब की धरती से दरबार से जाके बैठे सन। मैं शब्द वरत रहा सिंह और गुरु गोबिंद सिंह महाराज का नाम श्री गुरु गोबिंद राय है क्योंकि साड़ी भाषा में प्रवानित हो गया सिंह शब्द। महाराज दरबार जाके बैठे ने सामने संगत बैठिया ने महाराज अपने चरणों के आले दुआले कुछ इस तरीके महसूस कर रहे हैं जिम्मे पीड़ हो रही हो इतिहास कर रहे थे इतों तक भी लिखते हैं कि महाराज के चरणों में कुछ खून के कतरे डिगते वेखे गए कि अज का तर्कवादी बंदा कहना भी ऐसा नहीं हो सकता। गल का कॉम्बीनेशन है कि एक पास देवी चंद वजीर अरदास करता उन्हें अपने नेत्र महाराज के चरणों जुड़े हुए ने मन जुड़िया हुए उधरों लोहे दियां सलाखां उहदियां अखां विच वजदियां ने गुरदेव के चरणों में खून के कतरे नजर आते हैं तर्कवादी बंदा कहना कि नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो जाएगा यह संभव नहीं असंभव है इंपॉसिबल है होने वाली गल नहीं मन नहीं लगता पर वह नहीं जानता कि सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने जिहड़े प्रमाण दिए ने उन्होंने जे तू जरा कु विचार लवें अपने हिरदे ते तैनूं पता लग जाएगा कि सच है। हुण असीं जदों डाक्टरी विद्या विच आउंदे आ डाक्टर ये कहिंदे ने बहुत वड्डा विज्ञान है इन्हां नूं दूजे रब मन्निया जांदे वो कहिंदे ने कि जे बंदा मर जाए तो मुड़ के जिउंदा नहीं हो सकता पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी कहिंदी है मृतक कौ जीवालणहार वो मोए नूं जिउंदा कर सकदे। विज्ञान कहिंदा साइंस कहिंदी है कि बिना साहां तो बंदे नूं जिउंदा रख्या नहीं जा सकता भावें आर्टिफिशियल साह दी सारी प्रक्रिया चलनी चाहिए पर सतगुरु महाराज की बाणी कहती है प्रभ भाव है बिन सांस से रख है बिना सांह तो रख सकता है गुरु की समर्था है। धर्मी बंदियां दे जीवन में दुख आना तुसी अक्सर अपने जीवन में वेखियो जिन्ना तुसी बहुत धर्म का कम करोगे ना उन्ने ही लोग तुहाडी विरोधता करदे उहदा की कारण है। सतगुरु महाराज ऐसी प्रक्रिया में मनुख नूं क्यों लगाउंदे ने क्योंकि दुख जीवन की कसमती है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का शब्द मैं संक्षेप शब्दों में वर्तन लगा महाराज बाणी कहिंदे ने दुख दारू सुख रोग पाया दुख ने दारू किवें बनने क्योंकि दुख में आकर मनुख ने मन करके परमात्मा नाल जुड़ने जदों सुख भी होगा ना उदों कई बार वो रब नूं भुला भी दिंदा ते कहिंदा सारा कुछ करन वाला मैं हाँ। सतगुरु महाराज की बाणी का बचन कई बार असीं इहदे अपनी मतलब के अर्थ कढ लैंदे आ अपनी मर्जी के अर्थ अनुमानित कर लैंदे आ जो पंक्ति है ए पेदात तेरी दातार ते वेखण वाला बंदा कहिंदा कि आ चीज जिस उत्ते लिखी हुई है उहदी दात है लेकिन जब इस शब्द नूं पूरा पढ़दे हां ते व्याख्या हो जाती है। महाराज कहिंदे ने केतियां दुख भूख सदमार ए पेदात तेरी दातार कईआं नूं दुख देना भुख देना यह प्रमाण इस गल दा है कि महाराज उहदे जीवन की कसवती विचों पास करके उहनूं बहुत कुछ बख्शिश कर लगे क्योंकि दुख विच जदों बंदे ने अरदास करनी है फिर वह अरदास मन करके अरदास होनी है तो सतगुरों के चरणों में प्रवान हो जाए। देवी चंद वजीर ने अरदास की यह भी अरदास गुरदेव के चरणों में प्रवान हो गई। जलादा ने अपना काम कर दिता हथ खोल दिते पैर खोल दिते छेड़े ठोकरा खांदा तुर पिया आनंदपुर साहब की धरती में डिगदा मत्था पत्थर ना जाके टकराउंदा पत्थर को पुछदे मैनू दस दे आनंदपुर साहब की धरती में राह केड़ा जांदा। धर्म की दुनिया का मार्ग बड़ा औखा है बड़ा औखा है धर्म के रस्ते से तुरना यह कहना बड़ा सौखा है लेकिन धर्म के रस्ते से जो तुरोगे अनेक मुसीबतें तुहाडे रस्ते विच आउणगियां अनेक दुखों का तुहानू मुकाबला करना पएगा पर सतगुरु महाराज की बाणी के इस वचन नूं अपनी हिरदे की पट्टी से लिख के लै जायो। महाराज कहिंदे ने हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राज दुख आउणगे पर सतगुरु महाराज अपने सेवक की पैज रखेगा पत रखेगा इज्जत रखेगा बिशर्ते कि सिख का भरोसा होवे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। देवी चंद छेड़े ठोकरा खांदा आनंदपुर साहब की धरती से पहुंचया अखां ते पट्टी बनी है किसी ने तरस खा के लहू ना लिबड़िया मनुख महाराज के दरबार में आया ਸਿੱਖ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਧੋਤੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ। ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੌ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਲਾਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ, ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਟੂਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਕਰੇ।

देश की संस्कृति से ढंग नाल बचाई जा सकती है। देश का धार्मिक पतन ना होवे ते देश की धार्मिक दुनिया नू केवल एक कोई जरिए नाल बचाया जा सकता है कि देश का कोई बहुत वड्डा संत महापुरुष कुर्बानी दे अपना शीस भेट करे। तो तैयारी दे जुटे ने इस देश दे उत्तों देश की संस्कृति दे उत्तों अपना शीस निछावर करने लई अपना शीस भेट करने लई। आप ब्रह्म ज्ञान की मूर्ति ने लेकिन फिर भी 26 साल तक भोरे विच रहे ते जद गुरु हरकृष्ण जी महाराज की रचना तो निकलिया बाबा बकाले तां आपने दिल्ली दे चांदनी चौंक दे अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। इस तो वड्डा त्याग रूहे जमीन दे किधरे भी देखण नूं नहीं मिलता। आप सब कुछ ने छुप के बैठे ने किसी ने प्रगट कर दिता है कुर्बान हो गए निछावर हो गए देश तो और धर्म तो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आप दे आए शब्द बैराग दी मूर्ति ने धर्म ते ईश्वर दी प्राप्ति लई बैराग मुख साधन है। बैराग तो बिना कोई भी राग मंडल परमात्मा तक नहीं पहुंचेया। कहत कबीर भगत कर पाया भोले भाए मिले रग राया। आपदा भोला स्वभाव आपदा भोलापन ते आप दे बैराग दी मूर्ति इतना प्रभावित कर दी सी जगत नूं कि भोले भाए ते बैराग दे प्रवाने आप दे आले दुआले कतर रहिंदे सन आप तो शिक्षा लैंदे सन आप तो दीक्षा लैंदे सन। इह सब कुछ वधदा होया देख के वक्त दे सताधारियां नूं चंगा नहीं लग्या। वक्त दे सताधारियां ने इह भी देखिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक जरखैज इलाका है खूबसूरत इलाका है। नूरजहां ने इत्थे तक कह दिता सी अगर फिरदौस बर्रुए जमीन अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर कोई फिरदौस जन्नत बहिश्त स्वर्ग जमीन देते है तो फिर यही है यही है यही है। कश्मीर दे जेहलम दे कंडे दे नूर जहां ने ए वाक उचारण कीते बस यही जन्नत है यही जन्नत है यही जन्नत है। इस जन्नत दे चों अनेकां ही पानी दे झरने ते दरिया निकलदे सन जो अगां चल के मैदानी इलाकियां नूं सरसब्ज करदे सन शादाब करदे सन। सिर्फ पानी दे झरने इत्थों नहीं निकलदे सन कश्मीर दे चों ज्ञान दे झरने भी निकलदे सन। ज्ञान की गंगा भी फुटती सी। कश्मीर ऋषि कशैप की औलाद का देश ऋषि मुनिया का देश तीर्थां का इलाका विद्वान पंडतां की भूमि। जिस तरह उच्चे पहाड़ा तो झरने थले आके दरिया थले आके मैदानी इलाकों नूं सरसब्ज करदे सन इस तरह पहाड़ा तो थले लैके ये विद्वान जगत का कल्याण करदे सन ज्ञान देके विचार देके और इस तरीके नाल रब नाल जोड़ दे सन। वक्त दे सताधारी पानी दे झरनियां नूं ते बंद ना कर सके ते बंद करना उन्होंने मुनासिब भी ना समझिया पर ज्ञान दे धारा जो उत्थों वगदी सी उन्हों बंद करन दा तहिया कर लिया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दे दरबार दे कश्मीर दे दरिया कश्मीर दे झरने फरियाद लेते आ रहे जिन्हां दे दिल दिमाग चो ज्ञान दी गंगा निकलदी सी नाम दे झरने चलदे सन विचार दे चश्मे वगदे सन। इस सारे चश्मे इस सारे झरने अज दरबार दे आनंदपुर साहब आके हाजिर होए ने बेनती करदे ने जोदड़ी करदे ने गुरु महाराज रहमत करो बख्शिश करो सुख जावांगे अगर ये मरुथल दे टिब्बे साडे अगों आ गए सता दे तो सुख जावांगे नेस्तो नाबूद हो जावांगे साडा गमन बंद हो जाएगा ते असी रस्ते च कईआं दी प्यास बुझांदे होए जो सागर दे लीन होना अपना लक्ष्य समझिआ इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी ते जगत दी असी
پیاس بھی نہیں بجھا

साचा सोए किस विसरिए चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रहाओ वक्खर नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोक पति ने ना पत होए ता पत रहे राखे जा सोए जय देखा तेरे आसमाए तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे की तै क्या होए जिसनो बख्शे साचा सोए हुन उठ चलना मोहत के ताल क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल जैसी नजर करे तैसा होए बिन नजरी नानक नहीं कोए तना श्री मैला पहला नजर करे ता सिमरे आ जाए आत्मा द्रवे रहे लिव लाए आत्मा परात्मा एको करे अंतर की दुविधा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर्ष्यों चित लागे फिर काल न खाए रहाओ सच सिमरिए हो वै प्रगास ताते बिखिया मह रहे उदास सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलत्र विचे गत पाई ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जियो तिस आगे तरे साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगे पावे मान सतगुर की मूरत हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहिब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे पंत नानक करे विचार साची बाणी स्यों तरे प्यार ताको पावे मोख द्वार जप तप सब इहे शब्द है सार तना श्री मैला पहला जियो तपत है बारो बार तप तप खपे बहुत बेकार जय तन बाणी विसर जाए ज्यो पक्का रोगी विरलाए बहुता बोलन चखन होए

चोर सवाले चोर सियाना फोटे का मुल एक दुगाना जे साथ रखी है दी जैर लाए जा परखी है खोटा होए जाए।

नाही सबका टब, तनत जग प्रित होए डूबता इव जग। कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे नाप पकड़े, ठगन कौ संसार रहाओ। आंत से ती नाक पकड़े सूझते तिन लो, मगर पाछे कछ न सूझे ते पद्म अलो। खत्रिया ता धर्म छोड़िया, मलेच्छ पाखिया गई, सृष्ट सब इक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराण सो गए, करें वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कहे नानक दास। तनासी मैला कैला हारती इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत देरी रहा। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन्ना एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतिष पावे तो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम वासा। त्रासली मैला तीजा, कर दूजा चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद। ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सदबल जाए, गुर कृपा ते हर मन वसाए। से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया। हर कृपा ते वसे मन आए रहाओ। अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए। पूरे गुरु की साची बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणी। एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई। नाम अमोल

गुरु प्रसाद बसे मन आए, सब में बसे प्रभ एको सोए, गुरुमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, सनातनी मैला तीजा। हर नाम तन निर्मल अख अपारा, गुर कै शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती पूरे पाठ प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुखोए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप मुक्त अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपे हर ते सुख पावे, बिन सतगुर सब मोई बिल लाए, अंग दिन दा जै सांत न पाए, सतगुर मिले सब कृष्ण बुझाए, नानक नाम सांत सुख पाए, तना श्री मैला तीजा। सदा तन अंतर नाम समाले, जी जंत जिने प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिनको पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगास हर नाम ते आवे रहाओ, ए हर रंग गूड़ा तन फिर होए, सांत सिगार रावे प्रभ सोए, हौ मैं विच प्रभ कोए न पाए, मूलों पुल्ला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिले प्रीतम सदा त्याए, साच नाम वड्याई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा। जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लो भाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वड्याई पाए, साच रते सुख सह समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभु साचे इक सच लाए, उत्तम बाणी शब्द सुनाए, प्रभु साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार, तनासी मैला तीजा। जो हर सेवे तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो साच समालो दुख जाए, साचे शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अगन बुझाए, अंतर सांत सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुरु

नाम की कीमत लिख कहीं न जाए, से जन तन जिन एक नाम लिव लाए, गुरमत साची साचा विचार, आपे बक्से दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ, हम मूरख मूरख मन माहे, हम मैं विच सब कार कमाहे, गुर प्रसादी हम मैं जाए, आपे बक्से ले मिलाए, विख्या का तन बहुत अभिमान, अंकार डूबे ना पावे मान, आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत साला ही सच सोई, आपे साजे करता सोए, किस बिन दूजा अवर न कोए, जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे, राग तनासरी महला तीजा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीठक ते खारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देव मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, हों बलिहार जाओ साचे तेरे नाम विटो, करण कारण

ओ दयाल दर्शन दियो अपना, ऐसी बख्श करी जय संत नानक, परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया, साची लिव लागी है पीतर, सतगुर स्यों मन मानिया। सनासरी मैला चौथा कर पहला, चौप दे इको अंकार, सतगुर प्रसाद। जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा, लग संगत साग सवारी, जो कंचन बै संतर तायो, मल काटी कटक उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तनासरी मैला चौथा, हर के संत जना हर जपियो, तिनका दूत परम पौ पागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिव लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गप

नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथा जी तना श्री मैला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो इक निमक पल सब किल पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरख प्रभु स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी जिनके वड्डे पाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी जन नानक दास दसानी तनासी मैला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सिख नीत चलो गुर चाली जो गुरु कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली राव हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवियो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासी मैला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती हर बिन रह न सकूं इक राती जो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सरवर अत आगा हम ले न सके अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपियो गुर रंग चलू ले राती हर हर भगत बनी अत सोबा हर जपियो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बना वह पाती नानक जन तुमरी शरणाई हर वाखो लाभ पगाती तना श्री मैला चौथा कल युग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर कुल्हा हर जपियो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक को प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दशा की तनासी मैला चौथा कर पंजवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरे प्रकट कर दीने राम पारस चंदन हम कास्त लोस्त हर संग हरी सब संग बए हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने जन नानक हर हृदय सद त्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने तना श्री मैला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सबना ते ऊपर
हर हर हर सेव छदाई रहाओ। हर कृपा निदकीनी गुरु भगत हर दीनी, तब हर स्यों प्रीत बने आई, बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी, नानक हर पे है सखाई। तनाकी मैला चौथा, हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर पौजल पार उतारी, मन बचन हृदय से आए हर होए संतुष्ट, इव पण हर नाम मुरारी, मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती, हर कीरत कर दिनवारी रहाओ। हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम, हर हर नाम जपियो गत पही हमारी, जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासी मैला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन, सब चाहे हर जियो तेरो नाम, गुर प्रसाद को विरला पावे, जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ, जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हूँ तिनके सद बलिहार जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देओ सोई हो पाओ, दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासी मैला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी, बोलो पाई हर कीर्त हर पर जल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनों जानी रहाओ, आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग पोहा हर पानी। तनासी मैला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जा कै वस है काम देना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जीड़े, सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना राव, जय हर सिमरन भया ते उपादगत कीनी, वड पागी हर जपना, जन नानक कौ गुर ए मत दीनी, जप हर पौ जल तरना। तनासी मैला चौथा, मेरे चाहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता चाहा, अवर क्या जाने कोई रहा, साचा साहिब सच तू मेरे चाहा, तेरा किया सच सब होए, झूठा किसको आखिए चाहा, दूजा ना ही कोई, सबना विच तू वर्तदा चाहा, सब तुझे प्यावे दिन रात, सब तुझी थामो मंग दे मेरे चाहा, तू सदना करें एक दात, सबको तुझ ही विच है मेरे साहा, तुझ ते बाहर कोई ना है, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाहे, सदना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे प्यावे मेरे साहा, ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सत नानक के पास साहा। तनासी मैला पंजवा, कर पहला चौपदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वचल निरंकारे, कोट पराध मिटे किन पीतर, जा गुरुमुख नाम समारे, मेरा मन लागा है राम प्यारे, दीन दयाल करी प्रभ कृपा, वस कीने पंच दुतारे राव, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भगत सोए दरबारे, सर्व जिया के दाते स्वामी, कर कृपा लेहो उबारे, तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए, तेरी कुदरत कौन बिचारे, जल फल मैयल रविया सर्व ठाई, अगम रूप गिरधारे, कीरत करे सगल जन तेरी, तू अविनाशी पुरख मुरारे, जो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारे। तनासी मैला पंजवा, बिन जल प्राण तजे है मीना,
जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस न पायो अब मन एक सो मोह कीना मरे न जावे सभी संगे सतगुर सबजी कीना रहाओ काम हेत कुंचर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उठी हेत बिदारा देख कुटंब लोभ मोहो प्राणी माया को लपटाना हत रखियो कर लीनो अपना उन छोड़ शराब पर जाना बिन गोविंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सद केला त्रासरी मैला पन्या कर कृपा दियो मोहि नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंगा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बिरानी छाडी अहं बुद्ध मोह मन बासन देख कर गढ़ा गाडी रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बहराई ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन बिन सियो तीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुरमीठा जल थल मैयल सर्व निवासी नानक रमैया डीठा तनासी मैला पन्या जब ते दर्शन पेटे साधु परे दिनस ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन में सतगुरु पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम पो पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोहता का हों मैं रोग मिटे कृपा ते जमते तय विवाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काडे किस गुर के कुर्बानी त्रासरी मैला पंजवा जिसका तन मन तन सब किसका सोई सुगड़ सुजानी किन्हीं सुनिया दुख सुख मेरा सौ बिदनी की खटानी जी की एक कै ही पैमानी अगर जतन कर रहे गो तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मंतानी डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए तृप्तानी ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बिलानी अलंकार मिर थैली हुई है तांते कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर तूमन ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्हीं तृप्त न पाई जो पावक ईदन नहीं त्रापे बिन हर कहां अगाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे न पूखा उद्यम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा कामवंत कामी बहु नारी पर ग्रह जो न चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लोभ महसूके हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कह नानक गुरते जाना।

को बने आवे, जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताँ कै कितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, बर्न न साको उपत ताँ कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरह कमानो मनता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। काफी मैला पन्या, बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पत्तूरी नाम लैत पोत अगना से, भगत बांछे सब चूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सिमरत पार पराना। शीतल शांत महा सुख पाया, संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, इहि नानक कीनो चोला।

तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला। नानक करके बोले तनासरी मैला पंजवा। पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहु देन। कहु न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार खोजे सब ताको दिखन न जाऊ लैन राव। जाप ताप प्रमन बसदा कर उर्द ताप लै गैन। ए विद नह पतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन। साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन। तनासरी मैला पंजवा। बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे। अस्थिर करे मेचल ए मनवा बौर न कथू कावे।

आगे संत संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभु सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरे नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्या हर हर लीने संत उबार हर के दास की चित वह बुरियाई तिसी को फिर मार रहा जन का आप सहाय हुआ निंदक पागे हार प्रमत प्रमत ऊहा ही मुए बहुड़ गृह ना मंजार नानक शरण परयो दुख पंजन गुण गावे सदा अकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासी मैला पंजवा अब हर राखन हा चितारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ दोस्त पई साध कै संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांसे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया त्रासरी मैला पन्या मेरा लागो राम स्यो हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो अपना कर।

निरपौ पै सदा सुख माने, नानक हर गुण गाए तनासी मैला पंजवा। औखद तेरो नाम दयाल, मोहे आतुर तेरी गत नहीं जानी, तू आप करे प्रतपाल रहाओ, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, दुतिया पाओ निवार, बंधन काट ले हो अपने कर, कभु न आवे हार, तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरवान, आठ पैर प्रभु को आराधी, नानक सद कुर्बान, प्रार्थना श्री मैला पंजवा, इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देओ रहाओ, अगन कुटम सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार, ऊंच नीच सुख दुख, तापस नाही तृष्णा पूख, मन बासना रच बिखे ब्याद, पंच दूत संग महा असाद, जी जहान प्राण तन तेरा, नानक जान सदा हर मेरा, त्रासी मैला पंजवा। दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप, तरण तारण हर निध दुख न सके ब्याप, साधु संग पजो गोपाल, आन संजम किछ ना सूजे, ए जतन काट कल काल रहाओ, आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, देव सिमरत कथे शास्त्र भगत करें विचार, मुक्त पाए साध संगत बिनस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक, तार मान दीवान साचा, नानक की सब टेक, त्रासरी मैला पंजवा। फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद कामना आवे, हर हर नाम ते आया, तांते मोह तारी ओट गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ, सुर्ग मृत पयाल पू मंडल, सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल कारण, हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाये, पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस

हो रहा है। कहने रात बड़ी अंधेरी है, काली बोली अंधेरी रात है, कोई जुगत दसो कि मेरे जीवन में दिन चढ़ जाए। और कहने दिन रहन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित भोरे मनक चानन चंद। हमें एग्जाम्पल दे रहा था कि रब ने रात का अंधेरा दोनों प्रबंध किए ने, दोनों बनाए ने, दोनों सुलझे रहे जिन दिन करके कीती रात, रात भी उन्हें बनाई। क्योंकि देख अमृत संसार उपाय करतार उपाय, संसार बिरख को दोए फल लाए। उन्हें नेकी नाल बदी, सत नाल झूठ, जिन नाल रात, सर्दी नाल गर्म, हर एक चीज अपोजिट बना दी। ते बनाई इसलिए नहीं कि तू दोनों प्रवान कर, दो चीजा इसलिए बनाई कि दोनों विच तू चोन कर। लो आ तेरा इम्तिहान, इन्दे विच तेनू नंबर मिलने ने, इन्दे विच तेनू डिग्री मिलनी, होर मनुख का कोई काम नहीं। कमन काज सिरदे जग भीतर, जन्म कमन फल पाया। इन्दा जवाब है कि तेरे सामने एक बुधारत रख दिती है, दो वस्तुआं रख दितियां ने, उन्हां विचों एक पसंद है। गुरु ने बाणी भी चाकिया, कहन लगे राह दोवें एक जाने, दो राह ने इन्हां विचों तू एक पसंद, तेरा राह के रा दोवें एक जाने, कोई सिज सी। एक ख्याल करियो हुण, अच्छे गुरु ने एहो एग्जाम्पल दे दिती, कहन लगे हे मेरे रब, हे मेरे सच्चे धनी, तू सारे संसार नूं वणज करन लई इस धरती ते भेज दिता। हर जीव सच कहो हमारा तू धनी, सब जगत वणजारा राम राजे, सारे जीवन के भांडे भी तू साध दिते।

संसार पात्र लोड़ बनते कहने लगे सारा संसार नाम भी होना बैठा है तो दुखी हो रहा उन लोड़ है सारा संसार प्रभु की प्रेमा भगती तो विछड़िया बैठा है तो दुखी हो रहा दिन रात जुल्म हो रहे हैं अत्याचार हो रहे हैं संसार की हालत यह हो गई है कि कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उदरिया कूर अमावस सच चंद्रमा कूर अमावस वांगू आ गया जो कूर की अमावस की रात हो तो ये छोड़े भी ऐसे रात है उसे रात नहीं हर पास रात गुरु ने यह गल बानी भी चाह कह लगे जो मैं देखा कि हर पास कूर की अमावस है कूर ही खिल रहा हो झूठ ही झूठ है भावें राजे के रूप में है भावें प्रजा के रूप में है संसार कूड़ प्रवृत्त हो गया

सब कुछ झूठ। राजा भी झूठा, प्रजा भी झूठ। ख्याल करियो, झूठ का आखरी अर्थ है जेड़ा हमेशा रहने वाला नहीं। जिवे आखिए दूजे लफ्जा में जादूगरी दिखे भी, जो कुछ दिसदा है वह है नहीं, उन्हें झूठ आखते हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो होवे ना तो वह आखोगे ना, जो झूठ बोल रहा है। जो कुछ कोई दिखा रहा है वो भी झूठ है, जो कुछ कोई कह रहा है वो भी झूठ है, वो है नहीं, इसका मतलब झूठ। भाई गुरदासी ने इस गल को होर क्लियर किया, कहन लगे बाजीगर की खेड जी सब कूड़ तमाशा। हुण जादूगर की खेड की होंगी, हाथ विच मिट्टी की मुट्ठी लैंदा, एक डंडा जहा उपरों फेरदा, तो ऐ खोल के कहता आ देख लो रुपया बन गया, रुपया दिसदा, रुपया हर कोई दिसदा, पर उन्नी देर ही दिसना तो जिनी देर उनकी तली ते है। कहने लगे दुनिया की हालत भी हो, दुनिया चीज फिर हाल सगले, फिर हाल का मतलब होना ऐस वे है, अगले पल होनी है नहीं होनी मैंने नहीं पता। आप कहने फिर हाल मैं आया इतने खड़ा, इसका मतलब हूं है। कहने लगे दुनिया की हर एक चीज की निशानी झूठ क्यों है? कहने लगे दुनिया चीज फिर हाल सगले, बस होना है अगे नहीं। जादूगर की खेड वांगू हसते पिया होया रुपया है, अगले पल उन्हें कौन ही होना, जे अगले पल भी उन्हें कोल रह जाए उन्हें तुहाडे कोलों पैसा पैसा मंगन की लोड़ है, तो दिन रात रुपए बनाई जाए उन्हें भिखारी बनन की लोड़ है। पर जो दिसदा है वह है नहीं, इस दना कूड़ है। गुरु कहने लगे मैं देखता की हूं,

हथा धोए सच तो पर जानिए जा सच करे प्यार। कह लगे जब सच नाल प्यार पैदा हो जाए, सच नाल स्नेह पैदा हो जाए, तो जिंदे नाल स्नेह पैदा हो जाए ना उन्दे तो मनुख सब कुछ वार दिन जाए। उन्हों नहीं छड़ी सकते साची प्रीत हम तुम क्यों जोरी तुम क्यों जोर अबर संतोरी। गुरु कहने जिस नाल जिस दिन सच नाल प्रीत पै गई सच नाल न्यू लग गया सच नाल प्यार पै गया उस दिन तुम कोई सच दे उस जिन्नी मर्जी कुर्बानी देने का समय आ जाए तू आखेगा मैं सच नहीं पिया।

अंध चुनो बड़ भाग्य सगल मनो पार ब्रह्म पपाया उतरे सगल भूख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साधन भर

वाहेगुरु साहिब जी, तंड सिमरन हब किच लदम, बिखम न डिठम कोई, जिस पत रखे सच्चा साहिब, नानक मेट ना सकै कोई। प्रेम पटोला तैं सह दित्ता, ढक्कण कु पत मेरी, दाना बीना साईं मेंडा, नानक सार ना जाना तेरी।

फट के पटक जाएगी। कहते सतगुरु जी दियो पंक्ति, स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नेत। मेरे आ मना कितने कुत्ते वाली वेख ला, वेख्या सी बुले शाह ने। बुले शाह अपने गुरु नाल रुस पिया से, अनायत खां नाल ना, कोई अनायत हुसैन खां भी लिखता है अनायत खां, ओदे नाल रुस पिया को गल हो गई। छड गया गुरु दा दर, छड के ते थां थां कदी पटकदा फिरदा अंदर मजूसी। कहिंदे हन एक दिन एक सीनरी ओदे सन्मुख अखां दे आ गई। एक मालक वो अपने कुत्ते नूं कुट रहा है, कुट कुट के बाहर कढ़दा है, सोटियां मार रहा कुट कुट के बाहर कढ़दा है, ते कुत्ता घर नूं वड़दा है। आखिर जदों कुट खांदियां भी घर नूं वड़दा जा रहा ना, आखिर मालक ने उस नाल लाड किया, उसनू अंदर आउन दिता। बस वो कुत्ते वल वेख के कह दिता बुले शाह ने, वो बुलिया तेरे नालों ते कुत्ते चंगे, तेरे नालों मालक दा दर कदे ना छड़ दे, पावे सौ सौ वजन जुते, उठ बुलिया चल पीर मरा लै, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते। कहन लगे वो तेरे नालों कुत्ते चंगे वेख के बाजी जित गया ते तू हार गया, जा अपने पीर नू मनाया सी। सच असी गुरु दा दर। मैं एक भाई साहब जी दी सवैया नाल ही आपां समाप्ति सुख मुड़ के करना, जे मैं इस तरह ही कर देवां ओ उस ढंग नाल ही पढ़ देवां अर्थां दे हिसाब नाल। भाई साहब कहिंदे हन जदों कोई बच्छा गऊ दा गऊ नालों विछड़ जाए ना, ते दूसरी गऊ थलो चाहे दुध पीना, दुध नहीं पीवेगा लत्तां जरूर खावेगा। दूसरी दलील भाई साहब कहिंदे हन हंस वैसे मानसरोवर छड़दा ते नहीं, ते जे छड़ जाए बदकिस्मती नाल किते छप्पड़ तो जाके लभण लगे हीरे मोती लभणगे, नहीं लभणे। तीसरी दलील दित्ती भाई साहब जी ने, कहिंदे को राजे दे द्वारे ते भावे पहरेदारी खड़ा, किसे गलो राजे दा द्वार छड के पटक जावे, किसे होर दी नौकरी कर ले, होत मान पंग मेहमाना काहू बात की, तैसे गुरसिख आन देव की शरण जाहे, रहो ना परत राख सकत ना पात की। ओ पापिया तेनू कौन कबूल करेगा। एहो जे सतगुरु कदी महाराणा प्रताप ने एक मरासी जो खेड़ा किया ना जंगल च अपड़ गया, कहिंदा दस, कहन लगा है ही कुछ नहीं देवा तेनू की। महाराणा प्रताप कहन लगा मैं ते मरासियां लेना ही है, कुछ ना कुछ मैं लैके ही जावांगा। कहन लगा फिर होर ते कुछ नहीं आ ला मेरी दस्तार, हुण दस्तार नू रोली ना, मेरी दस्तार जे लई आ ना खेड़ा करके ते इनू रोली ना। सच्चा कहिंदे अकबर दरबार च आके न्योंदा नहीं सी, दसण वालिया दस दिता इहदे सिर ते दस्तार है महाराणा प्रताप दी, ते अज नहीं नमस्कार करेगा। और जिस गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चमकौर दी गड़ी च सिर दा ताज ही साडे सिर ते रख दिता, उस ते मेरा ताज ही नहीं रखिया, निकल लग्या ना, सतगुरु ने जोड़ा ला दिता। कहन लगे सतगुरु जी नूं ठंड बड़ी या कंडे रस्ते ऐसे, कहन लगे नहीं किसे सिख दे केसां ते मेरा जोड़ा आ गया ते गुनाही बन जावांगा, मैं भागी बन जावांगा पाप दा। जेड़ा गुरु अपने सिर दा ताज रखदा, गुरु के सिखा अज ताज तू रोलदा तेरे, इस दस्तार नूं कबूल ना करे। ओ केस जेड़े केस मेरे सतगुरु इन्ने संकट विच भी कहिंदे हन कि ते मैं बेअदबी दा भागी ना बन जावां, ते गुरु का सिख कहाउण वाले आ, मैं ते भैणां नूं भी कहांगा भैणों अपना आप सावधान होवो, भैणों तुसीं अगे सिखां नूं जन्म देना है, तुहाडे तो अगे पीढ़ी चलनी है, कदी भुल के भी किसे ढंग नाल भी केसां दी बेअदबी ना करो। जे गुरु दा दर चाहुंदे आ, केवल यह नहीं सच है शोभ नीक आ उदों ही गुरु दा कहिआ मन के आओ हुण सूखम जे अर्थ।

अमृत शाड़ बिखर बिख काहि माया मोह परम पहुले सुतदा रासों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत

मननान कपवे न पिख ऐसा नामो निरंजन होए जी को मन जन मन कोए पांच प्रवान पांच

तीर्थ तप दया दत्त दान जेको पावे दिल का मान सुनया मनया मन कीता पाऊ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भगत न होए सुहासदास बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन जाओ कवण सवेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति मां कवण जित आकार वेल न पाईया पंडती जे हो वह लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे

ज्ञानखंड गण ज्ञानखंड में गण प्रचंड अतिशयनाद शर्मखंड की बाणी रूप अतिशय काढ़ कड़ी है बहुत अनूप किया गल्ला कथिया न जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथा घड़िया सुरस दंग शुद्ध कर्मखंड की बाणी जोर जिथे और न कोई होर जिथे चूत महाबल सूर तिन मैं राम रहे भरपूर तिथा ऐसी तो सीता महिमा माही दागे रूप न कथने जाए ना वह मरे न ठाके जाए जिनके राम वसै मन माए तिथे भगत वसै के लोग रहे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेख नजर निहाल तिथे खंड मंडल बर पांड जे को कथे तंत ना अंत।

धर्मदाम से परमरो हरहत भूतल कभेश अंग राग न रंग जाके जात बादल नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप मी गान सदेक मुरखब दूत गर्भ गंजन स्वरूप भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंग अनादमिक पुरख पार सर्वलायक सर्व गायको सर्व गोप्रत पार सर्वगंध सर्वहंत सर्वदेहन बेख सर्वशास्त्र न जानी जे रूप रंग हर देख।

केसरवतर देसाय केसरवतर पेशाय केसरवतर राजाय केसरवतर साजाय केसरवतर दीनाय केसरवतर लीनाय केसरवतर जाओ केसरवतर पाओ केसरवतर देसाय केसरवतर पेशाय केसरवतर कालय केसरवतर पालय केसरवतर हंता केसरवतर गंता केसरवतर पेखी केसरवतर पेखी केसरवतर काजय केसरवतर राजाय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग भीम है के आकल लाम है के साहब कलाम है के उसनों बजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है श्री किस्म दाम है कि निम्न सकाशता करी बलबराजता है बलंदर मकान है जमीन और जमान है तमी जल तमाम है रुजो दान है हरी फल जी मैं जय गिरी नाने गल तरंग है अभेद है भंग है जी जल नवाज है गिरी विराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त प्रभुत है प्रभुत प्रवाह है सजल सदा है सदैव स्वरूप भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समास्तल सलाम है सबल काम है निर्वास रूप है गाज अनूप है ओंगाज रूपे नास रूपे नंगी नामे त्रिपंजी तर कामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वान रागे त्रिभुव स्वरूप है सज सूत है नरकं प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदा सदा है विभक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है चाचरी छंद अभंग है नंग है बेख है लेख है ब्रह्म कर्म नादय गा

अतंध है बंध है ये भक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचंत है सुनंत है लेखा देखा ले घटाए गाय समय गम है नीलनाद है नित सुनत है जात जात चर बड़ चंद।

परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारी नमो देश तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह ताम सिंह शांत रूपे नमो परम दत्तंग दत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कल कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो पंग पंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे इंद्र पंगी इंद्र काले अनंगी कामे एक अश्री शंग अजय अलय भय भय भू अजुगनाश गास गंज पंज लख बख अकाल दयाल लेख बेख नाम काम घाट नाथे परमाते अजो नियमो नि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म परम गंज लेखे भुजंग प्रयात शंग नमाजल प्रणामे समाजल प्रणाश्य गंजल नामे समाजल निवास इंद्र गांग बभूते समाजल स्वरूप गोकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग बभूते

सरीपा सरी भगवान कृपा बिन त्याग जान निदान चलेंगे। वीर बार बटेवरिया बरियार बजारे सर की तार बछैया तोर तो देश मिलेंद मवासन माते भी जान के मान मलैया। गाड़ गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं जग चार लवैया। साहब श्री सब गुसरना एक जाच कनेक सो एक दवैया। दान देवन निराचर भूत भविख भगवान जपेंगे। जी जित जल में सल में पाली पल में सब थप जपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तन वापन के भवन खपेंगे।

इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रजन रजया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखया पाया। कह नानक शरीर प्रवाण हुआ, जिन सतगुर से जो तलाया। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहाल आए, वे संसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा विखारी, कह हर बिन अवर न कोई, कह नानक नेत्र अंध से सतगुर मिलया, जब दृढ़ होई। ए श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नो बठाई, साचा सुनने नो बठाई, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जत सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस माणी, साचा लख बढ़ाणी।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने।

0: गुरु अंगद देव जी महाराज आखन लगे तू गद्दी दा वारस है सामला गद्दी सच्चे पातशाह तुर पए ने उथो गोविंदवाल साहब तो सतगुरां दे मगरे संगत चले गई ने इधर दातू गद्दी ते विराजमान हो गया बड़ा हंकारी है कहिंदा जिवें हुण जाके नेमितकार गुरु अमरदास जी जी कहिंदा लफ्ज कहिंदा सीधा ही कुछ भी नहीं ना गुरु कहिंदा ना दास कहिंदा कहिंदा जे साडे नौकर नूं जाके नेमितकार कीती नरकां दे भागी होवोंगे मैं थोड़ी मुक्ति करांगा। आप उपदेश कर लग पिया प्रसाद सिंह जी सारिया संगत गुरु के मगरे चले गई एदे क्यों केड़े रह गए उही चाटड़े रह गए जेड़े नूं चकदे सी जेड़े कहिंदे सी वे गद्दी दा वारस ते तू है तुहाडे नौकर मौजां लुटदे आ तुसीं धक्के खांदे फिरदे आ। प्रसाद सिंह जी किसे ने दातू नूं मूंह ना लाया क्योंकि साध सिंह जी रब सब तो वख नहीं पर देखण वाली अख नहीं संगतां नूं इन्ना ज्ञान सी इन्नी नॉलेज सी इन्ना पता सी कि गुरु कौन है गुरु की पछाण करन वालियां संगतां नूं पता सी ये ते ईरखावादी ते नफरतवादी है। और साध सिंह जी जिहड़ा इदों अगला इतिहास है वो कल दे जमाना च आप जी नाल सांझा करांगे स्टेज ते बोलदे बहुत त्रुटियां रह जांदियां अणजाण बच्चे सन के खिमा करनी माफ करना अते हां भैन जी मतेवाल तो पहुंचे ने मेरे भैन जी अमरप्रीत कौर ये अपने हरप्रीत दे नगर दे ने बड़ा मन चाह हुंदा। और साध सिंह जी मैं कहना हाँ जथेदार साहब नी दोपहर के दौरान जरूर एक बारी जथे का नाम अनाउंस कर दिया करो क्योंकि जेडे इलाके पिंड सज्जन आए होंगे ने कुदरती सबब न मिल हो जाता कि साढ़े मुंडे भी इतने गुरु का जस कर रहे आए हुए ने जिदा इधर सरदार सतनाम सिंह जी पंडोरी लकोदर कोलनी ते हरप्रीत सिंह जी मत्तेवाल अमृतसर के रहन वाले अरसा सिंह जी ते जसविंदर सिंह शानदार कविंदरी जथा अणजाण बच्चे समझ के खिमा करनी समुचिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भुला चुका की खिमा आप सारा जन रल के अनंत साहब जी का जाप करना बुलाओ फतेह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की।
1: ਕਿਰਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਮਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

माता के मद में ऐन रहे दीवानिया दिन रात मस्त रहे, दिन रात नशे विच रहन गए जो बंद।

बल्कि एक ख्याल करो सियाने चतराई भी एक नशा है। विद्या भी कई बार नशा हो जाती है। पर एक ख्याल करो नशा कोई भी हो उनका सुभाव मिलता है उनके आत्मा को जिंदगी पानी टांगता है पानी मारता है। आत्मा हर एक नशे दिया को जी है क्योंकि गल मस्ती की गल पी है मन में आख्या मैं मस्त रहना पसंद करना मैं मस्ती पसंद मस्ती ले किस नशे की लोड़ है। तो एक ख्याल करो मस्ती जवान की नशा कोई भी होवे भावे तन का होवे भावे मन का होवे उनका स्वभाव बिल्कुल मिलता है। आज तो इको जी नशा ही पुरुष की आदत होंगी है जड़ी गल उनके मन में आ जाए जड़ी विकार उनके मन में आ जाए बस वो धुन छड़ गई नशे की हल्की जड़ी धुन एक बार मन में आ गई वो धुन छड़ गई नहीं दिन रात और भोन जिन्नी देर

पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहो तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लप रंगाए।

लक्ष्मी कीर्तक गनी न जाई है, गान ना सको मीका, गान ना सको सीका। नामन मैं तेरो प्रभ नामा, ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता, इशनानन मैं शनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा, कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा, हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलाव त्यों बोला स्वामी, कुदरत गवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी महला पंजवा, कर चौथा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

परजाग पाव सेन्द्राव काम क्रोध हरण मद मोह मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरण निवार करने तारु पात राख परमानंद जल तयनक तरंग माया गुर ज्ञान हर हृद मंत शेद अहं मद करुणामय चिंत मेट पुरख अनंत शेद अहं बुद्ध करुणामय चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पाल मुहूर्त प्राभ ध्यान सहज समाध दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाचिय रज साध मोह मिथन दुरंत आशा वासना बिकार रख धर्म परम बिदार मन ते उदर हर निरंकार तन आड आड भंडार हर निद होत जनाना चीर खाल मूड़ मुग्ध कटाख सरितार पहि गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वतर रमण परम हंसाईरीत देत दर्शन श्रवण हर जास रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पत उदार गुजरी की वार महला तीजा सिकंदर बिराहिम की वार की तुनि गौणी एको ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा यही जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाही गुरु कै पाणे जो चलै ता जीवन पद भी पाए ओए सदा सदा जन जीवते सो जो हर चरणी जितलाही नानक नदरी मन वसै गुरमुख सहज समाही महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंद मार दूजे भाए सुते कभे न जागै माया मोह प्यार नाम न चित है शब्द न विचार यही मनमुखता आचारु हार नाम न पाया जन्म वृथा गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी अपना आप पायो न तदों होर न कोई मता मसूरत आप करे जो करे सोई तदों आकाश ना पाताल है ना अंतर लोई तदों आपे आप निरंकार है ना उपत होई जिस ज्यों तिस भावे तिवै करे तैस बैन अवर न कोई श्लोक महला तीजा।

कहो फिर खाए। गुरमुख हो कोई गारड़ू तैन म्याल मल दल लाई पाए। नानक से ही उभरे जे सच रहे लिव लाई पौड़ी। ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी। अंदर तीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी। जाहू वह खसम दयाल ता महल कर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख में लाए सी। सलोक महला तीजा सबना का सब एक है। सद ही रहे हजूर नानक हुक्म न मनई ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी जिन कौ नदर करे। हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण होए। महला तीजा रैन सबाई जल मुई कंत न लायो पाओ। नानक सुख वसन सुहागणी जिन्ना प्यारा पुरख हर राओ। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता। उपाय कितै ना पाई है हर कर्म विधाता। गुरशब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अगन भुजी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरम

उपजी हर प्रेम कसाए। हार रंग रहे सदा रंग रापे, रसना हार दूजै पाए खुआए। श्लोक महला तीजा, कलयुग मह नाम निधान, गुरमत निधान भगती खटिया, हर उत्तम पद पाया। सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अन दिन नाम त्याया। विचे ग्रह गुर बचन उदासी, हो मैं मोह जलाया। आप तरिया कुल उद कुल जगत दराया, तन जने दी माया। ऐसा सतगुर पाए सोई पाए, जिस तोर मस्तक हार लिख पाया। जन नानक बलहारी गुर अपने, विटहो जिन ब्रह्म पूला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, ज्यों देख दीपक पतंग पजाया। पंडित भुल भुल माया वेख, है दिखा किन के आण चढ़ाया।

कर बहु गर्भ बधाया। साधन भोजन नाल ही सत पिखिया, मन हठ जन्म गवाया। इतड़िया विचों जो जान समझदा, जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किसनु आख सुनाई, जा कर दे सब कराया। पौड़ी माया मोह परित है, काम क्रोध अहंकारा। यह जम की सरकार है, इन्हा उपर जम का डंड करारा। मन मुख जम मग पाई अन, जन दूजा पाउ प्यारा। जम पुरब दे मारी अन, को सुने ना पुकारा। जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा। हमें ममता मोहनी, मन मुखा नु गई खाए। जो मोह च दूजे चित लाइंदे, तिना व्याप रही लपटाए। गुर कै शब्द पर जालीऐ, ता एह विचों जाए। तन मन हुवै उजला, नाम सै मन आए। नानक माया का मारण हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महला तीजा। ए मान केतड़िया जग परमिया, थिर रहे न आवै जाए। हर भाणा ता परमाए, अनुकार पर पंच खेलो पाए। जा हर बख्शे ता गुर मिलै, अस्त्र रहे समाए। नानक मन ही ते मन मानिया, ना किस मरै न जाए। पौड़ी काया कोट पार है, मिलना संजोगी। काया अंदर आप वस रहिया, आपे रस भोगी। आप अतीत लिप्त है, निर्जोग हर जोगी। जो तिस पावे सो करे, हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाए बेजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह आप खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए। वाह वाह सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए। वाह वाह बाणी सच है, सच मिलावा होए। नानक वाह वाह करते आंस, प्रभ पाया करम प्राप्त होए। महला तीजा। वाह वाह करती रसना, शब्द सुहाई। पूरे शब्द प्रभ मिलिया आई। बटभागियां वाह वाह मुँह कढ़ाई, वाह वाह करें सही जन सोने। तिन काउ प्रजा पूजने आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सचै सुभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया, गढ़ अंतितर। कूड़ कुसत अभमानी, भरम पूले नजर न आवनी। मनमुख अंध अज्ञानी, अपाय कितै न लभनी। कर पेख तके पेखवानी, गुर शब्दी खोलाई अन। हर नाम जपानी, हर जियो अमृत बिरख है। जन पिया ते तृपतानी, श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए। वाह वाह करत्या हर स्यों लिव लाए, वाह वाह करमी बोलै बुलाए। वाह वाह करत्या सुभा पाए, नानक वाह वाह सत रजाई। महला तीजा। वाह वाह बाणी सच है, गुरमुख लद्दी भाल। वाह वाह शब्द उचरै, वाह वाह हिरदै नाल। वाह वाह करत्या हर पाया, सहजे गुरमुख भाल। सेवट भागी नानका, हर हर हृदय संसमाल। पौड़ी ए मनात लोभिया, नित लोभे राता। माया मनसा मोहनी, दह दिस फिराता। अगै ना जात न जाय सी, मनमुख दुख राखाता। रसना हर रास न चखियो, फीका बोलाता। जिन्ना गुरमुख अमृत चाखिया, से जान त्रिपताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिया, जे सच्चा गहर गंभीर। वाह वाह तिसनो आखिया, जे गुणदाता मत धीर। वाह वाह तिसनो आखिया, जे सब मह रहिया समाए। वाह वाह तिसनो आखिया, जे देंदा रिजक संभाए। नानक वाह वाह एको कार सलाहिया, जे सतगुर दिया दिखाए। महला तीजा। वाह वाह गुरमुख सदा करहे, मनमुख मरहे बिख खाई। ऊना वाह वाह न पावई, दुखे दुख बिहाए। गुरमुख अमृत पीवना, वाह वाह करहे लिबलाए। नानक वाह वाह करे से जन निर्मले, त्रिपवन सोजी पाए। पौड़ी हर कै भाणे गुर मिलै, सेवा भगत बनी जाए। हर कै भाणे हर मन वसै, सहजे हर रस पी जाए। हर कै भाणे सुख पाई है, हर लाहा नित ली जय। हर कै तख्त बहाली है, नित निज कार सदा बसी जय। हर का भाणा तिन्नी मन्या, जिन्ना गुरु मली जय। श्लोक महला तीजा।
वाह वाह से जान सदा करहें जिन कौ आपे दे बुझाए। वाह वाह करते अमर निर्मल हो गए हुमै शब्द हुमै विचों जाए। वाह वाह गुरमुख जो नित करे सो मन चंदिया फल पाए। वाह वाह करें से जन सोहणे हार तिन कै संग मिलाए। वाह वाह हृदय उचरा मुखों भी वाह वाह करे नानक। वाह वाह जो करे हौ तन मन तिन कौ देओ महला तीजा। वाह वाह साहेब सच है अमृत जा का नाऊ जिन सेव्या तिन सुफल पाया हो तिन बलहारे जाऊं। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो दे सो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुर सिख नित सब करहो गुरपूरै। वाह वाह पावै नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ न आवै। वाह पौड़ी हर जियो सचा सच है सची गुरबाणी। गुर सतगुर ते सच पछाणी है सच सहज समाणी। अन दिन जागहि नानक सबहि जागत रहन विहाणी। गुरमति हर रस जाखिया से पुन पुराणी। बिन गुर के नैना पायो पच मुए अजाणी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह बाणी निरंकार है तस जीवड़ वरना कोए। वाह वाह अगम था है वाह वाह करे सोए। वाह वाह अवे परवाह है वाह वाह करे सोए। वाह वाह अमृत नाम है वाह गुरमुख पावै कोए। वाह वाह करमी पाई है आप दया कर दे नानक। वाह वाह गुरमुख पाई है अन दिन नाम लई महला तीजा। बिन सतगुर से वे शांत न आवई दूजे नाही जाए। जे बहुते रालोची है बिन करम पाया न जाए। जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाई खुआई। जम्मण मरण न चुकाई होमै विच दुख पाए। जिन्ना सतगुर सों चित लाया सो खाली कोई नाही। तैन जम की तलब न हो गई ना होए दुख सहाय। नानक गुरमुख उभरे सच्चा शब्द सुमाही। पौड़ी ढाडी किसनो आखी जे खसमें तरे प्यार। दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार। ढाडी दर घर जा पाए सी सच रखे उरतार। ढाडी का महल अगला हर कै नाई प्यार। ढाडी की सेवा चा करी हर जाप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा। गूजरी जात गवार जा सो पाए अपना। गुर कै शब्द विचार अनदिन हर जप जापना। जिस सतगुर मिलै तिस भाव पवै सा कुलवंती नार। सा हुक्म पछाणे कंत का जिसनु कृपा कृति करतार। ओहो कुचजी कुलखणी पर हर छोडी पधार। पै पाया मल कटी आए निर्मल होवै शरीर। अंतर प्रगास मत उत्तम होवै जप हर जप गुणी गहीर। पै विच वैसे पै रह पै विच कमावै कारु। ऐथै सुख पव बड़ियाइयां दरगह मुख द्वार।

पंजवां आंतर गुर आराधना जिहवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर सेती रतिया दरगाह पाई ऐठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ये वत दे जग मैं उत्तम काढ़ी है बिरले कही के महला पंजवां रखे रखण हार आप भारे अन गुर की पैरी पाए काज सवार अन हुआ आप दयाल मनो ना विसार अन सात जनक संग भव जल तार अन साकत निंदक दुष्ट खिन माही बिदार अन